0: ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाज़ी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री

0: सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhodkoshi in Timore, a border town in Rasuwa district, due to the rock slide and swelling of the Lende River situated along the Nepal-Tibet border. It then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital, Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said that around 500 people were missing. According to China's state-run news channel, 3 people were killed and 265 are missing on the Chinese side of the border. Videos from the affected areas showed a powerful surge of muddy water, rocks and debris sweeping through the border region. Officials said that around 100 people have been rescued from different parts of the affected areas. Of them, 30 are undergoing treatment at Tribhuvan University Hospital in Kathmandu. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighbouring nation. The Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The numbers are +977 985 131 6807 and +977 970 910 7500. Nepal Tourism Board also issued similar numbers, including toll-free emergency number 1234, hotline number 1144, and tourist police number 98512894545 for help. The Embassy of India in Beijing also issued a helpline number 0086-185-1428-4905, which can also be contacted through WhatsApp. At least 50 of the Indians missing were pilgrims for the Kailash Mansarovar Yatra. Several states, including Uttar Pradesh and Kerala, have also issued helpline numbers. Besides Indians, missing tourists are from more than 2 dozen countries, including US, Malaysia, UK, South Africa, Australia, and the Netherlands.

0: जो सुबह उठकर भी सोया रहे उसकी आंखों में सपने नहीं पलते, जो हर दिन को एक नया दिन माने उसके हाथों से मौके नहीं फिसलते, थोड़ी उम्मीद थोड़ा हौसला और चलने का इरादा भर हो फिर मंजिल दूर नहीं बस एक कदम भर हो। जी हाँ, जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है शुरुआत करने का साहस। हम अक्सर सही समय, सही मौके और सही हालात का इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि सच ये है कि हर सुबह अपने आप में एक नया मौका लेकर आती है। जरूरत बस इतनी है कि हम उसे पहचाने और उसका इस्तेमाल करें। छोटी शुरुआत से भी बड़े बदलाव संभव है, बशर्ते हम रुके नहीं, थके नहीं और अपने इरादों पर भरोसा बनाए रखें। इसी सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
1: हाय वैष्णवी, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड आई थिंक वैष्णवी हैड ऑलरेडी सेड एंड वेरी इंस्पायरिंग लाइंस एंड हैज मोटिवेटेड यू इनफ फॉर द मॉर्निंग। एंड देयर इज आल्सो अ वेरी फेमस कोट दैट आई रेड एज अ चाइल्ड एंड इट हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी दैट ऑब्स्टिकल्स आर दोज थिंग्स दैट यू सी व्हेन यू कीप योर eyes off your goal. So if your eyes are set on the goal, then probably whatever comes your way you will just face it with fortitude, isn't it? तो हौसला बनाए रखिए और अपने आप पे यकीन रखिए, believe in yourself because every day is a new opportunity to begin, right? And every day we bring a fresh new आज सवेरे for you to give you the perfect start to your day. And हसबे दस्तूर लाते हैं हम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें. And in our metro news section we'll go and see what's happening in your very own city. And of course the last section Vaishnavi, that we and our listeners always look forward to, in which we remember some of the personalities who either have their birthdays or birth anniversaries or death anniversaries. Let's start with the headlines first.
0: जी बिल्कुल। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से इसकी लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार अब तक करीब 1,21,000 टन प्याज खरीद चुकी है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोबाइल वैन और विभिन्न सरकारी तथा सहकारी खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। वहीं पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से करीब 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है।
1: Prime Minister Narendra Modi will address the Khelo India dialogue through video conferencing today. Organized by My Bharat as part of the celebrations for National Sports Day 2026, the program will bring together young people from across the country. With athletes and public representatives, participants will discuss India's Olympic ambitions, youth leadership, the vision of a Viksit Bharat, and the importance of building a drug-free generation. From the sporting field, let's now turn to something that reaches almost every Indian kitchen. Well, you said the humble onion you were talking about, right? And going on to the next story, that the Indian Institute of Creative Technologies or IICT and Netflix have announced scholarships for 100 students across India. The scholarships will provide up to 80% financial support for 6 courses covering exciting fields such as visual effects, animation, gaming, media technology and interactive comics. And the opportunity isn't limited to students alone. Working professionals can also apply.

0: creators looking to turn their imagination into a career, this could be an important stepping stone. From opportunities for young minds, let's move to a matter that concerns everyone, that is our health and well-being.
1: स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली चिकित्सा संघ और भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। IMA के अनुसार अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स ना लेने की सलाह दी गई है। H1N1 के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। वहीं ये तो सेहत की कुछ खबरें थी। अब रुख करते हैं गोवा का, जहां इतिहास, बलिदान और राष्ट्रीय एकता को समर्पित एक स्मारक देश को अपनी विरासत की याद दिला रहा है।
0: That's right, Vaishnavi. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the Patra Devi Martyrs Memorial in Goa. The memorial commemorates the courage and sacrifice of the freedom fighters who took part in the 1955 Patra Devi Satyagraha. There are more details from our correspondent.
2: Defense Minister recalled the bravery of Satyagrahis, including Sahodara Devi, Colonel Singh Benipal, Madhukar Dambodar Chaudhary and others who participated in the 1955 Satyagraha. He said the memorial should inspire future generations to understand the price paid for freedom and uphold national unity and integrity. Mr. Singh said, Patra Devi Satyagraha demonstrated that Goa's liberation was not merely a regional struggle, but an expression of national consciousness. He also recalled the role of the armed forces in our Operation Vijay, which led to Goa's liberation from Portuguese rule in 1961. He urged young people visiting Goa to visit the memorial, learn about the freedom fighters and draw inspiration from their sacrifices. He said the memorial would become a pilgrimage-like site for the entire country and reminded citizens that preserving freedom is a collective responsibility. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: आगे रुख करते हैं दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में नई प्रागैतिहासिक जीवन गैलरी यानी प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी शुरू की गई है। ये गैलरी दर्शकों को करोड़ों साल पुराने उस दौर की दुनिया से परिचित कराती है जब धरती पर डायनासोर और कई अन्य विलुप्त प्रजातियां मौजूद थी। गैलरी में डायनासोर और दूसरे प्रागैतिहासिक जीवों के दिखाया गया है कि लाखों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था और अतीत की दुनिया से अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, जहां कई ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों को संरक्षण की नई पहचान मिली है।
0: Well, the second Suru festival has begun in Kargil, Ladakh, against the spectacular backdrop of the Noonkun peaks. Spread over 2 days, the festival brings together adventure and culture with activities including paragliding, river rafting, cycling and angling, alongside cultural programs. We have a report.
3: The festival was inaugurated at the picturesque Thamsana picnic spot by LHDC Kargil Chairman and Chief Executive Councillor Dr. Muhammad Jafar Akhon in the presence of senior officials from the Tourism Department and the Kargil Administration. The festival is witnessing participation of a large number of visitors from across Ladakh and different parts of the country and foreign tourists. Through adventure activities, traditional performances and local cultural programs, the event highlights the natural beauty, rich heritage and unique traditions of the Suru Valley. The festival is also providing a platform to promote tourism, local entrepreneurship and adventure activities while putting Suru Valley on the map as an emerging destination for both culture and adventure. With Anayat Ali, Harpreet Kaur for Art Savere.
1: सायरा कल रक्षाबंधन है और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य परिवहन और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा 900 से अधिक बसों में मिलेगी। वहीं हरियाणा में महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में कल दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उनके 15 वर्ष तक के बच्चे भी बिना किराया यात्रा कर सकेंगे।
0: Indeed, a very good news to all the women who are probably going to tie rakhis to their brothers, isn't it?
1: Jee.
0: Well, Mizoram has declared 79 monuments and archaeological sites as state-protected monuments. Adding to this heritage recognition, 3 sites in Champai district have also received the status of monuments of national importance from the Archaeological Survey of India. Among the notable sites is Kauchua Rupoi, which has more than 170 carved standing stones, offering a fascinating glimpse into the region's ancient history. And then finally we return to the world of sport, but this time it's

0: not a team event. Two Indian squash players are battling their way towards the title in Budapest.
1: वीर चोटरानी और वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वीर ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया, जबकि वेलविन सेंथिल कुमार ने कल मलेशिया के एन योव एनजी को 3-0 से मात दी। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। हर शहर की अपनी सुबह और अपनी खबर होती है, तो आइए आज के इन खबरों से रूबरू होते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। मोटापे से जूझ रहे लोगों में लिवर की बीमारी का शुरुआती पता लगाने की दिशा में एम्स के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण तरीका विकसित किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लिवर फाइब्रोसिस का पता लगाने का एक नया तरीका विकसित किया है। एम्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मोटापे और फैटी लिवर से पीड़ित 189 मरीजों पर किए गए शोध में लिवर की शक्ति, एक विशेष ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट के जरिए लिवर की सेहत का आकलन किया गया। एम्स के अनुसार लिवर फाइब्रोसिस की शुरुआती पहचान और आसान जांच से मरीजों को समय पर उपचार देने और लिवर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।
0: Moving on to Shehri Chennai, the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Officials seized 69,000 rupees from two Tangedco employees during a raid at Nanganallur following complaints of bribe demands. During the search, DVAC officials seized 59,000 from an assistant divisional engineer and 10,000 from another Tangedco employee. The complaints were against officials and employees of the electricity distribution office that they were demanding money for new power connections to houses and commercial establishments, transfer of service connections and replacement of faulty electricity meters.
1: और आगे बढ़ते हैं चेन्नई से महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने बुधवार को कहा कि देश में वर्ष 2011 से ही खुले में खाद्य तेल की बिक्री पर प्रतिबंध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नियम को लागू करने के लिए उनके विभाग की ओर से की गई कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं है। उन्होंने कहा कि खुले तेल की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य मिलावट को रोकना है।
0: Moving on to Bengaluru, Karnataka Education Minister and Soraba MLA Madhu Bangarappa has assured Malnad farmers that no harm will come their way due to the Kasturi Rangan Committee report. The centre has issued a draft notification for the seventh time to implement the report. The minister added that the State Legislative Assembly had rejected the committee report and the decision was conveyed to the central government. The report identifies 20,668 square kilometers covering 1,576 villages in Karnataka as an environmentally sensitive area, including 484 villages in Shivamoga district. The state government said it would not allow the Kasturi Rangan Committee report to be implemented.
1: और आगे बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा है कि कोलकाता नगर निगम में नया बोर्ड गठित होने के बाद कामकाज में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने निगम की सेवाओं से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा के लिए एक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है। इनमें जल निकासी, खराब सड़कें और सफाई कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। श्री मजुमदार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है।
0: And moving on to Hyderabad, following severe flash floods in Nepal, the Telangana government has moved quickly to help state residents affected there. Chief Minister Yerevanth Reddy has directed officials to closely monitor the situation and ensure all necessary support reaches Telangana people stuck in Nepal. On the Chief Minister's instructions, a special helpline and coordination centre has been set up at Telangana Bhavan in New Delhi. Officials there are working closely with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Kathmandu to coordinate relief efforts. Additionally, the state's General Administration Department has established a separate control room at the Telangana Secretariat in Hyderabad to assist affected families. Families unable to reach loved ones in Nepal are urged to contact the helplines with the person's name, passport details, mobile number, last known location in Nepal, tour operator details and family contact information.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं आज के मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में भी आसमान

0: बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और सायरा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में कैसा मौसम रहने वाला है आज?
1: वेल, इन तीनों शहरों का भी मिजाज कुछ न कुछ ऐसा ही रहे, बिकॉज ऑब्वियसली मानसून सा गया। चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू हॉवर बिटवीन 26 एंड 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव सम लाइट रेन एज वेल, मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 वाइल मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद will have one or two spells of rain or thunder showers, and the sky will remain partly cloudy throughout the day. Temperatures are expected to hover between 24 and 31 degrees Celsius.
0: और आगे बढ़ते हैं। समय के पन्नों पर कुछ तारीखें यूं ही गुजर जाती हैं, तो कुछ तारीखें अपने साथ बदलाव की एक पूरी कहानी लेकर आती है। 27 अगस्त भी कुछ ऐसी ही तारीख है। अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज के दिन क्या कुछ खास हुआ।
1: That's right. On this day in 1776, the Battle of Long Island began as British forces launched a major attack against George Washington's Continental Army in Brooklyn, New York.
0: और आगे बढ़ते हैं। 1859 में एडविन ड्रेक ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के टाइटल्सविल में सफलतापूर्वक कच्चे तेल की खोज की, जिससे आधुनिक व्यावसायिक तेल उद्योग की शुरुआत हुई।
1: Also on this day in 1883, the catastrophic climax of the Krakatoa volcanic eruption occurred, producing enormous explosions and devastating tsunamis across the Sunda Strait.
0: वहीं 1939 में आज ही के दिन जर्मनी में विमानन के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। हाइकल हे 178 नाम के विमान ने दुनिया की पहली जेट इंजन चालित उड़ान भरी। रोस्टॉक के हाइकल एयरफील्ड से उड़ान भरने वाले इस विमान को टेस्ट पायलट एरिस वाजर्स ने महज 6 मिनट तक हवा में रखा। ये वो पल था जब पहली बार किसी विमान ने प्रोपेलर के बिना सिर्फ जेट इंजन की ताकत पर उड़ान भरी, और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक जेट युग।
1: Indeed, a very turning point in, you can say, aviation history. Also on this day, in 1962, something happened.
0: बिल्कुल, NASA ने शुक्र ग्रह की ओर Mariner 2 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया, जो बाद में किसी दूसरे ग्रह के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला सफल अंतरग्रही मिशन बना।
1: On this day in 1979, Lord Louis Mountbatten, a member of the British royal family and former Viceroy of India, he was assassinated by an IRA bomb while aboard his boat off the coast of Ireland.
0: और 1991 में मोल्दोवा ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। बाद में 27 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 1999 में आज ही के दिन भारत ने मानवीय संवेदनशीलता की एक बड़ी मिसाल पेश की। करगिल संघर्ष के दौरान बंदी बनाए गए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के माध्यम से रिहा कर पाकिस्तान को सौंपा था। ये फैसला उस दौर में आया था जब करगिल युद्ध की तलखी अभी ताजा थी, लेकिन भारत ने वैश्विक मानवीय मानकों और सद्भावना का परिचय देते हुए कदम उठाया था।
1: Also on this day in 2003, Mars made its closest approach to Earth in nearly 60,000 years, coming within approximately 55.76 million kilometers. And yes, And when we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries, तो इस फेरिस्त में सबसे पहला नाम किसका है वैष्णवी?
0: सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र केलकर के बारे में। कोंकणी भाषा को केवल बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि साहित्य और विचार की सशक्त भाषा बनाने में जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनमें रविंद्र केलकर का नाम सबसे प्रमुख है। वे स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी चिंतक और प्रख्यात साहित्यकार थे। उन्होंने कोंकणी भाषा, संस्कृति और गोवा के पहचान के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके लेखन में गांधीवादी विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। कोंकणी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 2010 को उनका निधन हुआ था, लेकिन कोंकणी भाषा और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा में जब फिल्मों का मतलब अक्सर बड़े सितारे और भव्यता समझा जाता था, तब एक निर्देशन ने रोजमर्रा की जिंदगी, साधारण लोगों और रिश्तों की असाधारण कहानियों को पर्दे पर उतारा। वे थे ऋषिकेश मुखर्जी। उन्हें भारतीय

0: एंड वैष्णवी, जो हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत में भी बोल रहे थे ना, पल जो जाने वाला है, तो जो इस पल में जो भी लम्हा है आपका वो आपसे जिंदा है, तो उसमें अपना बेस्ट दीजिए. एंड ऋषिदा की आई थिंक फिल्मों के गाने भी बड़े इसीलिए बड़े मोटिवेशनल होते थे. इनफैक्ट लुक एट आनंद फिल्म ऑल्सो, यू नो, ये ऑल दो इट्स अ फिल्म अबाउट यू नो अ वेरी सैड टॉपिक, यू नो, पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ लुकिंग एट डेथ इन द आई, बट स्टिल इट्स इट गिव्स यू अ होप बिकॉज दैट पर्सन इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ ईच मोमेंट दैट इज देयर, चाहे वो एक ढलता हुआ सूरज ही क्यों ना हो. सो आई थिंक ऋषिदा हैज गिवन व्हाट यू नो मेनी फिल्म मेकर्स.
1: फिल्म की एक अलग ही खूबसूरती है, जब भी आप देखिए आपको अलग ही नजरिए से देखने का मौका मिलता है. जैसे कहते हैं कि आप जब भी बुक को एक अलग अलग फेज में पढ़ते हैं तो एक अलग मीनिंग निकल के आती है, वैसे मुझे लगता है फिल्मों का भी कुछ ऐसा ही है.
0: एब्सोल्युटली. एंड ऋषिदा सिनेमा, द ब्यूटी ऑफ हिज सिनेमा इज दैट ऑब्वियसली इट जस्ट अपीयर्स एज इफ इट इज आवर स्टोरी. आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देखिए तो उसमें कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ऑल ऑफ अस, जो आम इंसान की जिंदगी है.
1: बिल्कुल.
0: सो यस, अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर हु पास्ड अवे टुडे, बट आई ऑलवेज फील दैट आर्टिस्ट के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अ पर्सन हैज लेफ्ट अ वैक्यूम अ वॉइड, बिकॉज दैट पर्सन हैज लेफ्ट द बॉडी ऑफ वर्क यू नो ऑफ आर्ट दैट इज देयर फॉर पोस्टेरिटी. सो ऋषिदा प्रॉब्ली लिव्स ऑन थ्रू हिज सिनेमा. Today we are also remembering another very, you can say, an artist, a singer, an actor who is probably still living through his voice. We're talking about Mukesh. Yes, he obviously doesn't need any introduction. Considered to be one of the most popular and acclaimed playback singers of the Hindi film industry, among the numerous nominations and awards he won, his you know, kai baar yun hi dekha from the film Rajnikantha, it won him the National Film Award for Best Male Playback Singer. He was also popular as being the voice of actors Raj Kapoor, Manoj Kumar, Feroz Khan, Sunil Dutt and Dilip Kumar, and of course Raj Kapoor se sabse zyada unko associate kiya जाता है.
1: जी बिल्कुल. अब राज कपूर की आपने बात करी ही, तो उनके जो कुछ गाए हुए गीत हैं जो मुकेश ने गाए हैं उनके लिए, जैसे आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, दोस्त दोस्त ना रहा और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे गीतों में मुकेश की आवाज़ ने राज कपूर के किरदारों को एक अलग पहचान दी. वहीं कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जैसा हम अभी बोल ही रहे थे, वहीं मैं पल दो पल का शायर हूँ और कभी कभी मेरे दिल में, जैसे गीतों ने उन्हें हर दौर के संगीत प्रेमियों का चहेता बना दिया. तो आइए अब यादों के सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मुकेश की आवाज में एक ऐसा गीत जो आज भी दिलों में उसी तरह बसता है.

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning, listeners. Have a great day ahead.
0: Namaskar.

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: UPI ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% UPI पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से

0: बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861851424905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 150,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के स्वस्थ अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा।

0: सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। श्री सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सरकार के साथ लगातार राहत और बचाव के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली क्षेत्र पहुंचने की उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। भारत 5वें और अंतिम दिन श्रीलंका की पारी को जल्दी समाप्त करके निर्धारित लक्ष्य का पीछा करेगा। वहीं वीर चोटरानी और वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वीर ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया, जबकि वेलविन सेंथिल कुमार ने कल मलेशिया के एन यो एनजी को 3-0 से मात दी। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों और तत्काल सहायता में सहयोग कर रहा है। श्री गुतरश ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिले के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट

0: चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
1: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ, जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकी नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सिक्किम के ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा विश्व ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: सिक्किम की शान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा का चयन दक्षिण कोरिया के चुनजोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो पुमजे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ग्रैंड मास्टर सुब्बा सीनियर वर्ग में अंडर 60 पुरुष व्यक्तिगत पुमजे और टीम पुमजे में हिस्सा लेंगे। इस चयन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो पुमजे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान निश्चित किया है। मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर है। दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने कल के स्कोर 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good morning, this is Akashwani. I am VC Pramod with the World News. The headlines. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal. Over 750 people, including 133 Indians, missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown.

0: நேர்கள் கேட்டு ரசித்தது 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल

0: संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 भारतीय नागरिकों सहित कई लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8 बजकर

0: तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। श्री सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सरकार के साथ लगातार राहत और बचाव कार्य के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके पहुंचने की उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। यह कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीका वासियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों का फायदा ले रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच कोलंबो में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में 89 रन की बढ़त बना ली है। भारत पांचवें और अंतिम दिन आज श्रीलंका की पारी को जल्द समाप्त करके निर्धारित लक्ष्य का पीछा करेगा। मौसम विभाग ने कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சாக்ஷி, எனக்கு 1,00,000 ரூபாய் பரிசு பொருள் விழுந்திருக்கதா எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கு. என்ன சொல்ற? ஆமா, நான் இப்ப இந்த லிங்க கிளிக் பண்ணா என்னோட பேங்க் டீடைல்ஸ் கேக்குது, பான், ஆதார் எல்லாம் கேக்குது. அத நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு 1,00,000 ரூபாய் கிடைக்குமா? நான் இத ஃபில் பண்ணிடுறேன், உனக்கு என்ன வேணும் சொல்ல, நான் வாங்கி கொடுக்கறேன். ஹே, இந்த மாதிரி தேவையில்லாத லிங்க் எல்லாம் கிளிக் பண்றத நிறுத்து. நமக்கு எஸ்எம்எஸ் மூலமா இல்ல வாட்ஸ்அப் மூலமா இந்த மாதிரி பரிசு பொருள் விழுந்திருக்கு அப்படின்னு லிங்க் அனுப்பி நம்மளோட பேங்க் டீடைல்ஸ் திருடுறதுக்கான ஒரு வழி. தயவு செஞ்சு இதை நீ பண்ணாத. அதுக்கப்புறம் ஐயோ அம்மா, என் பேங்க்ல இருந்து பணம் போச்சேன்னு கதறாத. இவளுக்கு மட்டும் கிடையாது, உங்களுக்கும் தான். தேவையில்லாத லிங்கை கிளிக் பண்ணாதீங்க, உங்களோட பணத்தை இழக்காதீங்க.
1: நேர்களை, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நியூஸ் ஆன் ஏர் செயலி வழியையும் கேட்டு ரசிக்கலாம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़

ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए

0: भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में NDRF की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में ROHM के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The Khelo India dialogue provided a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. The death toll from the flash flood that swept through parts of the Nepal-Tibet border has reached 162. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal has said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. India has dispatched the second tranche of 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar informed that the second flight has taken off carrying relief materials. India had dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines yesterday. Earlier, Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart. Balendra Shah assured him of

0: स्पोर्ट्स।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है हमें उस हिसाब से ही

0: nil yesterday. The two Indian players will now face each other in the semi-final this evening. Benchmark domestic equity indices were trading with modest losses in the afternoon session today. The Sensex was down 143 points to 77,330, while the Nifty dropped 36 points to 24,171 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।

0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
1: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहाले गए और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के

0: कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम

0: करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணி சென்னை.

0: கேட்ட அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது திரைகானம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में मौजूद 288 भारतीय नागरिकों से अभी संपर्क नहीं हो सका है। इनमें त्रिशूली वन बिजली परियोजना में काम कर रहे 73 भारतीय भी शामिल हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में भारतीय दूतावास परियोजना अधिकारियों के संपर्क में है। श्री जायसवाल ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 86 लोगों से अभी संपर्क नहीं हो सका है। इसके अलावा नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे में पश्चिम बंगाल के 32 नागरिक और केरल के 33 नागरिकों से भी संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: इस बीच नेपाल की कल भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुल बहे हैं और कई पनबिजली परियोजनाएं नष्ट हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के तत्काल प्रयास जारी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग मिले।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि

के हितों के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षित अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए सदैव उपलब्ध रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनमोहन यादव भी शामिल हुए। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 402 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने पांचवें दिन 189 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9

0: Sri Lanka were 402 for 9 a short while ago. Earlier, Sri Lanka were bowled out for 290 in the first innings after India declared the first innings at 503 for 9. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 4:10 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்டு.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: தேநீர் நேரம் கேட்பதற்கு முன்
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: carries a pay level 3. The assistant halwai cum cook post carries level 2 pay. Both posts include a trait skill test in cooking to assess suitability. Candidates aged between 18 to 25 years are applicable. Applications must be sent by ordinary or speed post to the Additional Commissioner of Customs Establishment, Custom House, Rajaji Salai, Chennai, 600001, so as to reach on or before 31/12/2025. The application form and full notification is available at https://www.chennaicustoms.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और आइए सुनते हैं कहां कहां निकली रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली, सीएनआई अथवा सीएनआई से संबद्ध किसी अन्य चर्च से संबंधित 60 वर्ष से कम आयु के पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन एवं भत्ते यूजीसी मानकों के अनुसार होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 21 दिन। आवेदन प्रपत्र, आवेदन करने संबंधी दिशा निर्देश तथा पात्रता मानदंड सहित आपको विस्तृत विवरण कॉलेज की वेबसाइट www.stephens.edu पर प्राप्त हो जाएगा। तेल उद्योग विकास बोर्ड नोएडा। तेल उद्योग विकास बोर्ड सेक्टर 73 नोएडा उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से उचित माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम है लेखा अधिकारी, लेवल 8 होगा, एक पद रिक्त है। लेखाकार लेवल 7, एक पद रिक्त है। अनुभाग अधिकारी लेवल 7, एक पद रिक्त है। आशुलिपिक ग्रेड बी लेवल 7, एक पद रिक्त है। सहायक लेवल 6, एक पद रिक्त है। आशुलिपिक ग्रेड सी लेवल 6, एक पद। उच्च श्रेणी लिपिक लेवल 4, एक पद रिक्त है। ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं और आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.oidb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना और वायुसेना स्कंधों में भर्ती हेतु 157वें कोर्स तथा भारतीय नौसेना अकादमी के 119वें कोर्स में भर्ती हेतु 12 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना के लिए आप आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2025। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा upsconline.nic.in पर ही आवेदन करना है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है। पात्रता की शर्तें, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश आदि की जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट पर ही प्राप्त होगी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड यूपी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड कुछ रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है प्रबंधक वित्त एवं लेखा, एक पद रिक्त है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए है। कंपनी सचिव के लिए एक पद रिक्त है सामान्य श्रेणी के लिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है और विस्तृत विज्ञापन के लिए किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र के लिए आपको वेबसाइट www.nhdc.org.in के करियर पेज के अंतर्गत जाकर देखते रहना होगा। श्रोताओं, रिक्ति से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप संबंधित संस्थान की वेबसाइट को विजिट कर उसे दूर कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम के 4:30 हुए हैं। वक्त है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी और उन खास हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। कैसे हैं अभिषेक आप?
2: Hello Naim, I'm very well, thank you. Hello and a very warm welcome to everyone tuned into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Naim Akhtar. Well folks, he's a cricket legend simply because of his unmatched statistical dominance. He finished his 52 test career with an average of 99.94, meaning he scored nearly 100 runs every single time he batted. Secondly, he had the ability to force opponents to completely rewrite the rules of the game. His batting was so overwhelmingly destructive that the England cricket team invented a controversial hostile leg-side bowling tactic known as the bodyline during the Ashes series to stop him from scoring. And lastly, he's known for his flawless leadership of the famous Invincibles team. Yes, he's the greatest cricketer ever and a down-to-earth human being. Yes, it's none other than the godfather of cricket, Sir Donald Bradman. And today we observe his birth anniversary. And we shall talk about him later in a program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
1: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध।
2: 300 Indians among thousands missing in the massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of ready materials.
1: नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार।
2: फोरकास्ट ऑफ हैवी रेनफॉल ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टिल सैटरडे।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित सीमा नहीं।
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the Khelo India Dialogue.

0: Yes, and today we're talking about something that's not just about sports, it's about young India. Leadership, fitness, volunteering and nation building.
1: बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये है कि जब देश के युवाओं को खेल के भविष्य पर बात करने के लिए सीधे तौर पर शामिल किया जाता है तो क्या होता है?
0: Yes, and the answer is the Khelo India Dialogue, a nationwide initiative bringing students, budding athletes, volunteers, policy makers and some of India's biggest sporting names together.
1: और सुनने वालों, ये कोई एक तरफा लेक्चर होने वाला नहीं है. इसका मकसद युवाओं की बात सुनना है, उनके विचार, उनकी उम्मीदें और हाँ, उनकी चुनौतियां भी.
0: And more than 1500 education institutions name are expected to participate virtually from IITs and IIMs to NITs, AIIMS, medical colleges and universities.
1: सोचिए, आप अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और अचानक साइना नेहवाल या मैरी कॉम जैसी चैंपियन से सुनते हैं कि टॉप पर पहुंचने के लिए असल में क्या करना पड़ता है.
0: और हियरिंग गगन नारांग, पीआर श्रीजेश, मीराबाई चानू और दीपा कर्मकार शेयर द स्ट्रगल्स बिहाइंड दोस मेडल्स.
1: और अब आता है दिलचस्प हिस्सा, युवा संवाद. युवा प्रतिभागियों को अपने विचार रखने का मौका मिलता है.

0: तो सुनने वालों, आइए इसे यही इंटरैक्टिव बनाते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi has said that the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said from sports universities to modern training centers, an ecosystem has been developed across the country where talent receives support at every stage.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि खेलों में 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की पहचान करने के लिए एक बड़ा टैलेंट हंट चलाया जाएगा।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: The Prime Minister expressed happiness that today's sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions but also to become better competitors.
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized those who play they blossom in sports.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: आज खेलो इंडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में मैसूर के एमटीबी माउंटेन बाइक सदस्य चरित गौड़ा ने देश में जरूरी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और आज के संवाद में शामिल होने पर खुशी जाहिर की।
3: I'm a MTB cyclist and Asian medalist. So today we had a conversation with PM about sports. So I'm really happy how the government is supporting us with sports and funds and all the facilities and infrastructure for us. So I'm really happy to see they have allocated a lot of money to support young people like me and others. And it's really helpful for us and for the country to take India's name to international stages.
1: One of the students, Shivya from Arya Mahila Mahavidyalaya, Pathankot, Punjab, said that the messages of the Prime Minister always motivate youth to work dedicatedly for building a Viksit Bharat.
4: ਅੱਜ ਦਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸੰਵਾਦ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਫਿਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
1: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today emphasized that India must evolve its sporting traditions into a vibrant sports culture. Addressing the students participating in the Khelo India dialogue at Hindu College in New Delhi, Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is actively developing a strong sporting ecosystem.
5: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे अब तो हम हर कंपटीशन चाहे वो कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक्स हो एशियन गेम्स हो अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: द खेलो इंडिया डायलॉग इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड सम वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स।
0: पहली थीम है खेलों का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना बेहतर सुविधाएं बेहतर कोचिंग स्पोर्ट्स साइंस और सबसे जरूरी बात सभी की भागीदारी क्योंकि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है चाहे छोटा शहर हो गांव हो सरकारी स्कूल हो या यूनिवर्सिटी कैंपस हर युवा को ये पता लगाने का मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं।
1: थीम नंबर टू इंडियाज रोड टू द 2036 ओलंपिक्स एंड दैट मींस आइडेंटिफाइंग टैलेंट साइंटिफिकली

0: having transparent selection systems and creating long-term development pathways for athletes.
1: Teesri theme yuva leader taiyar karne ke bare mein hai. Governance platform aur Mai Bharat ke netritv mein volunteering ke zariye, kyunki leader banne ka matlab sirf medal jeetna nahi hai, iska matlab zimmedari lena, dusron ki madad karna aur apne samuday mein yogdan dena bhi hai.
0: Theme 4, Viksit Bharat and Youth Empowerment, Future-Ready Skills, Civic Responsibility and Structured Volunteering. And Theme 5 is particularly important, Nasha Mukt Yuva.
1: Khel, fitness aur saathiyon ke network ka istemal karke yuvaon ko nashile padarthon ke sevan se dur rehne aur sehatmand vikalp chunne ke liye protsahit karna.
0: And that's a powerful message. A playground can become a place of opportunity, discipline, friendship and confidence.
1: Aaiye un khel diggajon ke bare mein baat karte hain jo yuva pratibhagiyon se baat cheet karenge. Ye shandar suchi hai, Deepa Karmakar, Saina Nehwal, Gagan Narang, P.R. Shrijesh, Mary Com, Baichung Bhutia, Pulela Gopichand, Anju Bobby George, Karnam Malleshwari, Meera Bai Chanu aur P.T. Usha. Ye aise naam hai jinhone कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और इस बातचीत में सिर्फ खिलाड़ी ही शामिल नहीं होंगे सांसद विधायक केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री और खेलों के खेल राज्यों के खेल मंत्री भी युवाओं से बातचीत करेंगे
0: Which brings us to an important idea young people shouldn't only be beneficiaries of programs they should also be participants in shaping them and there's another important message the conversation doesn't have to end with national sports day
1: युवा प्रतिभागियों को विकसित भारत युवा लीडर संवाद क्विज में हिस्सा लेने और माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा तो असल में ये बातचीत को लगातार भागीदारी में बदलने के बारे में है
0: स्पोर्ट वॉलंटियरिंग लीडरशिप फिटनेस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट आइडियाज बट वन कॉमन गोल एम्पावरिंग इंडिया यूथ
1: खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद सिर्फ युवा भारत से बात करना नहीं है बल्कि युवा भारत के साथ मिलकर बात करना है जमीनी स्तर से लेकर ओलंपिक के सपने तक खेल के मैदान से लेकर समुदाय तक खेल प्रतिभा से लेकर युवा नेतृत्व तक
0: द मैसेज इज सिंपल इंडिया यूथ हैज अ रोल टू प्ले इन बिल्डिंग इंडिया स्पोर्टिंग फ्यूचर स्टे एक्टिव स्टे इन्वॉल्व स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप द स्पिरिट ऑफ खेलो इंडिया अलाइव

0: and other compact objects. For Parikrama, this is Madhavi Kulkarni, Pune.
1: आज 27 अगस्त है जिसे दुनिया भर में विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाता है। पानी की हर बूंद को सहेजने और हमारी जीवनदायिनी झीलों के संरक्षण का संदेश देती झारखंड के जल स्रोतों पर आधारित हमारी रांची संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
2: जब हम बात झारखंड की करते हैं तो रांची के ऐतिहासिक बड़ा तालाब यानी रांची झील, डिमना लेक और तोपचांची जैसी खूबसूरत झीलें यहाँ के पर्यावरण और भूजल स्तर को बनाए रखने में रीढ़ की हड्डी रही हैं। झीलों के घटते अस्तित्व पर गहरी चिंता जताते हुए जाने माने पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल कहते हैं कि जल संकट से बचने के लिए झीलों का बचना बेहद जरूरी है।
3: झीलें केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है बल्कि ये हमारे स्थानीय मौसम को संतुलित रखती है और भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा स्रोत है।
2: झारखंड में झीलों को बचाने के लिए अब ग्रामीण और युवा स्तर पर कई अनूठे प्रयास शुरू हुए हैं। रांची और जमशेदपुर के कई सामाजिक संगठन हर रविवार श्रमदान के जरिए झीलों की सफाई कर रहे हैं। घटते जल स्तर और बढ़ते जल संकट के बीच ये कदम आने वाले कल के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं।
4: हम लोग पिछले कई महीनों से अपनी स्थानीय झीलों और तालाबों को बचाने के लिए एक निरंतर सफाई अभियान चला रहे हैं जो कि साप्ताहिक है। हमारे समूह के युवा और स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और श्रमदान के जरिए पानी में जमी जलकुंभी, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कचड़े को साफ करते हैं। हमारा मुख्य मकसद यह है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट होने और गंदा होने से बचाया जाए।
2: विश्व झील दिवस पर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जल के इन प्राकृतिक स्रोतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। झीलों का संरक्षण केवल एक दिन का संकल्प नहीं बल्कि हमारे जीवन को बचाने की निरंतर मुहिम होनी चाहिए। रांची से परिक्रमा के लिए मैं पूनम करकेट्टा।
5: विशाखापट्टनम रिसेंटली बिकेम अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल यूथ एंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी as India hosted the BRICS Youth and Sports Ministers meetings in the city and India's BRICS Chairship 2026, we have a report.
6: Youth and sports ministers, senior officials and delegates from BRICS countries participated in the meetings. They discussed ways to strengthen cooperation in sports, youth development, education, innovation and people-to-people exchanges. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya represented India at the ministerial meetings. Discussions focused on promoting sports as a means to encourage healthy lifestyles, develop young talent and strengthen friendship among BRICS nations. The meeting also provided an opportunity to showcase Visakhapatnam's tourism and sporting potential to the international community. The city's coastline, beaches and infrastructure were highlighted as major advantages for developing sports and water-based activities. The BRICS sports ministers adopted a joint declaration reaffirming their commitment to greater cooperation in sports and youth development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu proposed developing Visakhapatnam as a BRICS hub for water sports and sports tourism. The successful meetings have enhanced Visakhapatnam's international profile and opened new possibilities for tourism, sports, investment and opportunities for young people. The event also demonstrated how sports can bring countries and their younger generations closer together. With inputs from Allu Murali, this is Suma for Parikrama, Akashwani News, Visakhapatnam.
1: और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं अभिषेक से वहां की हलचल।
5: In squash, India's Veer Chotrani and Velavan Senthil Kumar have stormed into the semi-finals of the Budapest Open. Chotrani defeated Egypt's Mohamed El Sherbini 3-1 in the quarterfinals, while Velavan Senthil Kumar beat Malaysia's N. Yao N 3-0 yesterday. The two Indian players will now face each other in the semi-final this evening. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 539 points or 0.70% to close at 76,934. The Nifty lost 117 points or 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index and the Small-Cap 100 Index dipped 0.1% each. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
1: अब हम याद करेंगे अभिषेक महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके साथ ही फौरन बात करेंगे हम महान व्यक्तियों की जिनकी

0: ये आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: आज हम बात कर रहे हैं 1942 की, दिन 8 अगस्त, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा।
2: लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया।
1: ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है, 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। आज ही के दिन 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के साथ ही पोलिलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलिलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से।
2: दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया।
0: आज हम जिन हस्तियों को याद कर रहे हैं उनमें से हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी का, जिनकी आज पुण्यतिथि है और जिन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में ख्याति मिली है जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया और यही वजह है कि उनकी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं।
3: कहाँ है मंजू?
4: मंजू, आर यू रेडी?
3: बिल्कुल, ये लीजिए डैडी।
4: चलो सब नाश्ता करो।
3: दीदी प्याली में चाय भरो।
5: ये दोस्त तो जल क्या?
3: ए आशा फिलहाल जरा ध्यान से।
4: अरे ये उम्मीद नहीं थी शिवाय पी चौहान से।
6: Yes, Rishikesh Mukherjee was a director, editor and writer. He is regarded as one of the greatest filmmakers of Indian cinema. Popularly known as Rishida, he directed 42 films during his career, spanning over 4 decades, and is named the pioneer of the middle cinema of India, renowned for his social films that reflected the changing middle-class ethos. Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of art cinema. And among his many achievements, he remained the chairman of the Central Board of Film Certification, CBFC, and of the National Film Development Corporation of India, NFDC. And the Government of India honored him with the Dada Saab Phalke Award in 1999 and the Padma Bhushan in 2001.
0: और इनकी खास बात ये भी थी, आपने ये तो बताया कि पारिवारिक फिल्मों के दायरे में उनकी फिल्मों को ज़्यादातर रखा गया है, लेकिन उनकी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां जो थी वो भी पात्रों से ऐसे घुल मिल जाते थे कि लगता ही नहीं था कि ये पात्र हैं। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मों में आने से पहले गणित और विज्ञान का अध्यापन करते थे। उन्हें शतरंज खेलने का भी शौक था। फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर से मिले। उनकी प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने 1957 की फिल्म मुसाफिर से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी ऑफ बीट फिल्मों का निर्देशन भी किया और 1998 की फिल्म झूठ बोले कौवा काटे उनकी अंतिम फिल्म। थी. वैसे तो उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया और कुछ आपने अभी अवार्ड्स के बारे में.
6: बिसाइड्स द दादा साहब फाल्के एंड द पद्म विभूषण दैट ही वन, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट दादा अवार्ड्स दैट ही वन.
0: जी, 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1972

मुकेश की आवाज पर सबसे पहले उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने तब ध्यान दिया जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में गाना गाया था। मोतीलाल उन्हें मुंबई ले गए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्हें गाने की ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष जो 1941 में प्रदर्शित हुई थी एक्टर सिंगर के तौर पर काम करने का मौका मिला। बाद में उनका जो पहला गीत था 1945 की फिल्म पहली नजर का दिल जलता है तो जलने दो बहुत हिट हुआ। उसके बाद तो खैर एक के बाद एक उन्होंने ऐसे गीत दिए कि जिनके बारे में हम क्या ही कहें, उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया।

0: लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
1: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
0: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में T-सीरीज के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज खेल के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05. நேர்கள் இணைந்திருப்பது 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசையுடன்.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது விஸ்லேஷன் டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, चीनी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कृषि और औद्योगिक तंत्र काम करता है। गन्ने की खेती से लेकर चीनी मिलों, एथेनॉल उत्पादन, निर्यात और किसानों की आय तक भारत का चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। देश में लगभग 5 करोड़ किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं, जबकि चीनी मिलों और उनसे जुड़े उद्योगों में करीब 5 लाख श्रमिकों को आजीविका मिलती है।

0: एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में गन्ने का उत्पादन 500 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। वर्ष 2015-16 में ये 348.44 मिलियन मीट्रिक टन था, यानी पिछले 10 वर्षों में गन्ने के उत्पादन में लगभग 43.5% की वृद्धि हुई है। गन्ने की खेती का क्षेत्रफल भी 2015-16 के 49.27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 58.87 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, लेकिन हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत के चीनी उद्योग का आकार कितना बड़ा है, एथेनॉल उत्पादन ने क्षेत्र को किस तरह प्रभावित किया है, हाल में चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं और सरकार ने इसकी आपूर्ति तथा कीमतों को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं भारत के चीनी उद्योग और किसानों से इसके संबंध की। भारत में हर वर्ष औसतन 300 से 340 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत लगभग 280 से 290 लाख मीट्रिक टन सालाना है। जब उत्पादन घरेलू खपत से अधिक होता है तो अतिरिक्त चीनी का स्टॉक मिलों के पास जमा हो जाता है, इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे की कमी हो जाती है और कई बार गन्ना किसानों को भुगतान मिलने में भी देरी होती है। इसी चुनौती के बीच एथेनॉल उत्पादन ने चीनी उद्योग के लिए एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही इससे गन्ना किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त और अपेक्षाकृत स्थिर माध्यम भी तैयार हुआ है। हालांकि ये धारणा सही नहीं है कि एथेनॉल के लिए चीनी के इस्तेमाल से घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो रही है। 2022-23 में एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा लगभग 12% था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9% रह गया है। वहीं देश में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाजों, खासकर मक्का से प्राप्त होता है। एथेनॉल कार्यक्रम ने चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करने में मदद की है। सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी कीमत यानी FRP 365 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। वर्ष 2016-17 में FRP 230 रुपए प्रति क्विंटल था, यानी पिछले 10 वर्षों में इसमें 135 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। भारत चीनी का निर्यात भी करता है। 2016-17 में जहां चीनी का निर्यात 0.47 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2025-26 में ये बढ़कर 8 लाख मीट्रिक टन हो गया। भारतीय चीनी के प्रमुख निर्यात बाजारों में श्रीलंका, पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका शामिल है। श्रोताओं, अब सवाल है कि जब देश में चीनी का उत्पादन, उद्योग और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत है तो हाल के हफ्तों में इसकी कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
1: हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है। 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत 48.18 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर 55.70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, यानी एक महीने के भीतर करीब 15% की वृद्धि हुई। लेकिन इस वृद्धि को लंबी अवधि के रुझान से अलग करके देखना जरूरी है। अगस्त 2024 से जुलाई 2026 के बीच चीनी की कीमतों में सालाना वृद्धि लगभग 3% रही थी, इसलिए मौजूदा तेजी को मुख्य रूप से अल्पकालिक आपूर्ति और बाजार से जुड़े कारकों के संदर्भ में देखा जा रहा है। वर्तमान कीमत वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान 343 लाख मीट्रिक टन की तुलना में घटकर करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है। उत्पादन में कमी के पीछे गन्ने की फसल को प्रभावित करने वाली रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां और अत्यधिक वर्षा के कारण हुआ जलभराव प्रमुख कारण है। इसके अलावा त्योहारी सीजन से पहले चीनी की मांग बढ़ने की संभावना है। वैश्विक बाजार में भी चीनी की आपूर्ति कम हुई है और कीमतों में तेजी आई है। 30 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमत $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर $552 प्रति टन हो गई, यानी दो महीने से भी कम समय में 16% से अधिक की वृद्धि। 2026-27 के लिए वैश्विक स्तर पर चीनी की कमी का अनुमान करीब 33 लाख मीट्रिक टन है, यानी मौजूदा कीमत वृद्धि केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक आपूर्ति परिस्थितियों का भी इसमें असर है। इसके अलावा

0: अलावा सरकार ने यह भी पाया है कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों की ओर से सट्टेबाजी और जमाखोरी ने हाल की कीमत वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि कम उत्पादन के बावजूद भारत में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, अब सवाल ये है कि कीमतों में अचानक हुई इस वृद्धि और जमाखोरी की आशंका के बीच सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इसे समझने के लिए नजर डालते हैं सरकार की ओर से किए गए कुछ उपायों पर।
2: चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश भर के चीनी डीलरों पर 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लागू की गई है। वहीं 1 सितंबर 2026 से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें चीनी मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी कर रही हैं। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर महीने में चीनी का उत्पादन 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है। इससे त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की उपलब्धता में सुधार हो सकता है।
1: श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। हाल की कीमत वृद्धि को इथेनॉल कार्यक्रम से सीधे जोड़ना सही तस्वीर पेश नहीं करता। एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली गन्ने से बना सीरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ने की बजाय घटा है। वहीं एथेनॉल उत्पादन में अनाज विशेष रूप से मक्का की हिस्सेदारी बढ़ी है। दूसरी ओर एथेनॉल कार्यक्रम ने अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल का रास्ता उपलब्ध कराया है। इससे उन वर्षों में चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या कम करने में मदद मिली है। जब उत्पादन घरेलू खपत से अधिक होता है, मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने से किसानों को समय पर भुगतान करने की क्षमता भी बढ़ी है। श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो भारत का चीनी उद्योग केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं है। ये करोड़ों किसानों की आजीविका, लाखों श्रमिकों के रोजगार, चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति, एथेनॉल उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ एक इकोसिस्टम है। हाल में चीनी की कीमतों में हुई तेजी के पीछे कम घरेलू उत्पादन, मौसम और फसल संबंधी समस्याएं, त्योहारी मांग, वैश्विक बाजार में कम आपूर्ति और कुछ मामलों में जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे कई कारक हैं। लेकिन देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अक्टूबर के नए पेराई सीजन की शुरुआत के साथ आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के सामने चुनौती ये है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध हो, किसानों को गन्ने का समय पर भुगतान मिले और चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिरता भी बनी रहे। यानी भारत के चीनी उद्योग की कहानी केवल बढ़ती या घटती कीमतों की कहानी नहीं है, ये किसान, उद्योग, ऊर्जा और उपभोक्ता, इन सभी के बीच संतुलन बनाने की कहानी है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।

0: अब से कुछ ही समय में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारः एकविंशतिशताब्द्यां भारताय आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धः। अथ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दृश्यश्रव्यमाध्यमेन खेलो इंडिया संवादः सम्बोधितः। नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या 70+200 परिमिता जाता। विलुप्तानां अन्वेषणाय च अन्वेषणकार्यं निरन्तरं प्रचलति। बिहार उत्तर प्रदेशयोः जलाप्लावन स्थितिं सम्मुखीकर्तुं

0: NDRF दलानां विहितं नियोजनम्। सम्भाषणमञ्चे ईरानदेशस्य प्रत्यागमनाय कापि निश्चितसमयसीमा नास्तीति अमेरिकीराष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः। अपि च शनिवासरं यावत् बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् सर्वकारः भारतस्य कृते आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। सः अकथयत् यत् क्रीडा विश्वविद्यालयेभ्यः आरभ्य आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्राणि यावत् समग्र देशे एतादृशं वातावरणं निर्मीयते यत्र प्रतिभायै प्रत्येकस्मिन् चरणे साहाय्यं प्रोत्साहनं च लभेत्। अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इंडिया संवादं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् क्रीडा केवलं पदकावाप्ति पर्यन्तं सीमिता नास्ति, अपितु विकसित भारतस्य निर्माणे भारतस्य क्रीडा सामर्थ्यं युवशक्तिं च संघटयितुं एकं महत् राष्ट्रियाभियानम् अस्ति।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैश्विक क्रीडापटले स्वप्रतिभां प्रकाशयितुं देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे सामर्थ्यं विद्यते। सः असूचयत् यत् क्रीडाक्षेत्रे 5-15 वर्षपर्यन्तं वयस्कानां बालकानां चिह्नीकरणाय रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् एका महती प्रतिभा अन्वेषण योजना उद्घोषिता।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: प्रधानमन्त्री प्रसन्नतां प्रकटयन् न्यगादीत् यत् अद्य भारते क्रीडा उत्कृष्टा जीविकात्वेन अथ च व्यवसायरूपेण समुदेति।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: अत्रावसरे केंद्रीय युव प्रकरण क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कुशल नेतृत्वे क्रीडा राष्ट्रीय प्राथमिकता रूपेण अथ च युव सशक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधन रूपेण च संवर्धते।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: नेपाल देशे संजाते आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां संख्या प्रवृद्ध्य 70+200 संप्राप्ता। देशस्य इयम् अतीव दारुणतमा आपत् मन्यते, यत्र 88+200 भारतीय पर्यटकानन्तर्भूय सहस्रशः विलुप्तजनानाम् अन्वेषणाय नेपाल प्रशासन संस्थाः तीव्रगत्या समुद्धरण कार्याणि प्रचालयन्ति। ह्यः दुरापन्नेन जलाप्लावेन नेपालस्य त्रिषु जनपदेषु व्यापकः विनाशो जातः। नेपाल आरक्षिबलेन सूचितं यत् अद्य 93 नूतनशवाः प्राप्ताः। तिब्बत नेपाल प्रशासनानुसारम् एतावता 13,000+ विलुप्ताः सन्ति, येषु बहवः वैदेशिकाः वर्तन्ते। उभयोः अधिकारिभिः

0: ज्ञापितं यत् प्रायः 30 देशानां नागरिकाः विलुप्ताः अभवन्, येषु प्रमुखतया भारतस्य, अमेरिकादेशस्य, मलेशिया, युक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, रूस देशानां पर्यटकाः सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रीय आपत्प्रबन्धनबलेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन बिहार उत्तरप्रदेशयोः सीमवर्तिक्षेत्रेषु सम्प्रति कोऽपि प्रतिकूल प्रभावः नैव सञ्जातः। तथापि राज्य प्रशासनेन सह समन्वयं विधाय स्थितेः अनवरतं निरीक्षणं विधीयते। एनडीआरएफ महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला अवदत् यत् उभयोः राज्ययोः 20 दलानि निरतानि सन्ति, येषु 9 बिहारे, 11 च उत्तरप्रदेशे सेवा निरतानि सन्ति।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: आपत्काले जलसंकटे वा जनानाम् उद्धाराय, सुरक्षितस्थान नयनाय तथा आपदशमनाय एतैः दलैः सुरक्षा सज्जता कृता अस्ति। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः संसूचितवान् यत् ईरानेन सह वार्ता पुनरारम्भाय कोऽपि त्वरितकालसीमा नास्ति। ईराने आर्थिक संकटस्य उल्लेखं कुर्वन् ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सुदृढस्थितौ अस्ति। अपरपक्षे अतिचिन्तां शमनाय, वार्ता वातावरण निर्माणाय च कतार प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानः अद्य तेहरान नगरे ईरानी अधिकारिभिः सह मन्त्रणां करिष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन शनिवासरं यावत् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन श्वः यावत् ओडिशा, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्येषु अपि अतिवृष्टेः संभावना व्यक्ता। सहैव शनिवासरे, रविवासरे च ओडिशा राज्यस्य कतिपयेषु पृथक् पृथक् स्थानेषु अतीव भीषण वृष्टिः भवितुमर्हति। ऋतुविभागानुसारम् अग्रिमदिनद्वये अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु, आन्ध्रप्रदेशे, तमिलनाडुराज्ये, पुदुचेर्यां तथा करैकलक्षेत्रेषु च भीषण मेघगर्जनेन, विद्युत्पातेन, तीव्रझंझावातेन च सह वर्षायाः पूर्वानुमानं विहितमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधनयोजना श्वः स्वकीयानि 12 पूरयिष्यति। अस्याः योजनायाः शुभारम्भः 2014 अगस्तमासस्य 28 प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतः आसीत्। विवेकानन्दकेन्द्रस्य पूर्वराष्ट्रियाध्यक्षस्य ए बालकृष्णन्वर्यस्य निधने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अनुशोचितवान्। प्रधानमन्त्रिणा संस्मृतं यत् बालकृष्णेन 15 कालं यावत् स्वामिविवेकानन्दस्य विचारान् जनं जनं प्रति नेतुं राष्ट्रसेवायै च जीवनं समर्पितम् इति वार्ताः।

0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defence Minister Rajnath Singh says defence production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन चार गुना होकर 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई.
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़क कर 24,091 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई. इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे. हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे. सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बेकवाली का दबाव बना रहा जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे. बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई.
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up the early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ. सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HDFC बैंक 2.1%, NBC में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गए. इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, ICICI बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज हुई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, a mid-small private bank shed 2.6%, PSU banks lost 2.1% and BankEx dropped 1.7%. In contrast, capital goods gained 0.6%, telecommunications added 0.5% and healthcare rose by 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,557 companies declined, 1,779 companies advanced and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 14 पैसे गिरकर 95.55 रुपए पर बंद हुआ. पुनीत कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: पुनीत, मार्केट आज सुबह एक अच्छी शुरुआत के साथ था, कारोबार कर रहा था, लेकिन बाद में वो अच्छी शुरुआत सस्टेन नहीं कर पाया. क्या कारण रहे ऐसे और क्या लगता है कि करेक्शन आसपास या करेक्शन हो चुका है?
2: निखिल, देखिए, जहां तक करेक्शन का सवाल है, बाजारों में अभी एक इनहेरेंट एक सुस्ती कहूंगा, वीकनेस तो मैं शब्द शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बाजार सुस्त हैं. और खास कारण यह है उस बाजारों का सुस्ती का कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे आज आपने पढ़ा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, HDFC बैंक या जो बड़े बड़े बैंक के शेयर्स थे, वहां हमने थोड़ी गिरावट देखी. और यहां पर काफी बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टेड हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड हैं और उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे. और ये माहौल पिछले करीब एक या दो वर्ष से हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, वहां पर निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं आ रहा है. उस कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर कुछ मुनाफा आ रहा है, कुछ

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।

0: वैकेंसीज हैं, वहाँ नंबर्स भी उतने बढ़िया नहीं आए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से कुछ आप कह सकते हैं कि डिसिल्यूजनमेंट है स्मॉल इन्वेस्टर्स को, और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक महीना दो महीना तीन महीने से अंडर परफॉर्मेंस है। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र में जो बड़े बैंक्स हैं उनकी अंडर परफॉर्मेंस पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स अब कुछ वहाँ से आप कह सकते हो बेजार हो गए हैं वो, और उनको दिख रहा है कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में ज़्यादा पैसा बन रहा है शॉर्ट टर्म में, मैं कहूंगा, और वहां पर वो अट्रैक्टेड
1: है। DIIs के लिए, FIIs के लिए,
0: देखिए DIIs के पास एक स्टडी फ्लो ऑफ फंड्स है फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो DIIs तो एलोकेशन कर रहे हैं लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, लेकिन FIIs जो है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन लेते हैं। DIIs में खास बात यह मैं कहूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि अब जो फंड फ्लोज हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बढ़ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा डिस्ट्रॉक्शन है, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रहेगा ये।
2: Puneet, a lot of action today, including block deals as well. IPOs are also coming out with their subscriptions. So, but tell us about the sectors where we saw minor gains. Capital goods went up by 0.6%, telecom 0.5%, and healthcare 0.4%. But specifically, capital goods in the context of the gross domestic product, the real economy as we call it, where because now there's a projection, because the announcement will be made on the 31st. Of August, what the first quarter GDP growth is going to be from April to the June period. How would you rate the capital goods sector right now? Because it's a very important component in our net exports.
0: So, Arjun, you're right. See, traditionally in India, stock markets have been driven mostly by the services sector. So therefore, you find telecom companies doing much better in India, banking sector stocks, healthcare stocks. So all these stocks were doing traditionally much better. However, I think in the last few months, while these so-called large caps, whether in IT services or in terms of healthcare, we found that these are banking, they were not giving much returns to investors, but government has put a lot of emphasis on manufacturing sector. And you will see a lot of push for manufacturing because in manufacturing, we have new technologies coming up. We are expanding our defense production. We are expanding our space exploration. So industry is getting a lot of push from there. And markets are responding to that. So capital goods which supplies equipment, machinery for manufacturing sector, we are seeing a lot of interesting developments there. And also, it is also linked to construction to some extent. At the same time, there are other sectors which are now emerging as defensive sectors for investors as compared to FMCGs of the world. Earlier, if you wanted defensive investments, you went to FMCG now or IT. But today, if you want defensive investments, you actually go to manufacturing. You look at capital goods. So this is the changing nature of the
2: PMI market. Manufacturing index has also gone up well above 50, 55 in fact.
0: Absolutely. So above 50, it denotes expansion of activity. So surprisingly in India, which was a mostly, and even today, it's a mostly services driven economy, we find the manufacturing is making a headway. And I think markets are also kind of reflecting that change of mood.
2: So we'll have the industrial production data which will come out tomorrow as well. Let's move on to the Asian and the European markets now.
1: बिल्कुल, एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कॉस्पी आज 1.5% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.2% नीचे आकर बंद हुआ। इस बीच बैंक ऑफ कोरिया ने अपने अगस्त महीने की बैठक में बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 3% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान पहले के 2.6% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.7% पर ही बनाए रखा। यूरोपीय बाजारों में अगर हम बात करें तो ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.3% गिरकर और जर्मनी का डेक्स 0.3% के उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे। पूरी तेज दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, जो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने हैं? और ऐसी स्थिति में हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट्स में पिछले दो वर्षों में। इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल स्टॉक इंडेक्स है, पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक दिशा बता रहा है कि इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी कहाँ जा रही है। साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकॉनमीज थी यहाँ पर AI driven जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, वो ज़्यादातर लिस्टेड है वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा। साउथ कोरिया को अगर देखें तो मैं ये कहूँगा कि

0: to where the central banks are going to take the economy. If they're looking for high interest rates, then I think we should need to be cautious about valuations in the stock market. As an investor, that is my major concern. But I think it's quite challenging for central governors right now.
1: In more news, Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector. The defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees, and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically, but was also developing the capability to maintain, overhaul and upgrade them. Your comment on defence security vis-a-vis the economy, because you're looking at manufacturing and employment.
0: So, interestingly, India, of course, until a few years back, was importing most of its defense requirements. So, there were strategic issues with that, the dependence on other countries, reliability of, and the technical advancement that you could make. Also, when you were importing all this defense equipment, then it only meant that we did not develop domestic manufacturing sector. So, what has happened in the last 10 years, I think it's really remarkable. The way India has emerged as a manufacturer of defense equipment domestically for our own armed forces as well as an export sector. And I know many companies personally, small manufacturing companies, which have really come up and done very well in defense sector. So, it is good for India's security, strategic security. And it is also good for India's manufacturing sector, because that ecosystem is now developing very well, very fast. And I think it's a remarkable, if you really look back on, I look back on the 10 years, 10, 15 years of India's growth in last decade, then I think defense sector manufacturing would be the one of the biggest stories, success stories of Indian economy.
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये भारत के वित्तीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ खाते खोले गए, इनसे लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी समावेशी पहल है, जो सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रति खाता 5,356 रुपए जमा हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 78% खाते अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, जिनमें से लगभग 56% भागीदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लाखों लोगों का सशक्तिकरण किया है। श्री चौधरी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव किया है। पुनीत, जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था, एक ऐसी सोच रखी गई थी कि हर एक भारतीय के पास उसका बैंक खाता हो, चाहे वो किसी भी तबके का खाता हो। आज जब हम ये देखते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
0: देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रैक्टिकली हर भारतीय के पास आज एक बैंक अकाउंट है। उसका कई आपके सीधा बेनिफिट दिखते हैं, दो बेनिफिट आपको बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के UPI की आज ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो बिकॉज ऑफ जनधन योजना की वजह से, क्योंकि गांव गांव में, घर घर में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है, कि जो हम गांव गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है, वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और UPI, ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है, और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
2: ओके,
1: लेट्स नाउ मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
0: देखिए, जो ईरान और US की जो वॉर है, वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है। वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब्स गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई, वो नहीं है अब, एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है। और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है। तो मुझे लगता है

0: नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब.
1: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, in the Gulf area where, the shipping takes place and, oil prices are escalating as a result of what Iran is doing and what the U.S. is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's moderated. Is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
0: So it is basically a sign of better supply of oil in the world, because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up, and therefore the Urals prices have come down. Primarily, I would say this is a stabilization of the oil market. Oil market, I think, is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are of course settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
2: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
0: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं. और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही हैं, लेकिन गैस की जो सप्लाईज है वो अफेक्टेड है. तो वो दोनों देश अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं. तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है अब पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं. तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट.
2: जी, आगे बढ़ते हैं. सर्राफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 1,58,386 रुपए प्रति दस्कान पर था, और चांदी 1.9% लुढ़क कर 2,39,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. पुनीत जी, एक निवेशक के नजरिए से अगर इन दोनों चीजों को देखें तो आपको क्या लगता है, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफी जंप आया है, और यदि यूएस डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं. तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेजी बन रही है. और जो फैक्टर्स हैं अभी यूएस डॉलर वीकनेस के, वो थोड़े फैक्टर है. अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे. तो यूएस इंटरेस्ट रेट्स पे नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा.
1: ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इनटू गोल्ड वंस अगेन. Why is this trend picking up now? Because silver went up when there was a lot of buying by Indian farmers because of the post-harvest income being diverted towards this investment. What are the central banks doing now?
0: So central banks, as like I said, if the dollar index suffers, then immediately we say buying in precious metals. So that is what is happening. They're hedging against a dollar depreciation.
2: पुनीत, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद निखिल.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defense Minister Rajnath Singh says defense production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years. Then global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
2: Namaskar.
1: Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने

0: कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से विदेश निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India stepped up efforts to trace and rescue internationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359. As authorities race against time to find over 1,300 missing people, including 288 Indians. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 internationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli 1 power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 285 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है, जबकि 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित भारतीयों तक पहुंचने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रहा है। इस बीच चीन में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 200 भारतीय नागरिकों ने सुरक्षित निकासी के लिए मदद मांगी है। पेचिंग में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षित निकासी के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।

0: नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव दल तथा आवश्यक संसाधन तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए सुरक्षित भंडार से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के सुरक्षित भंडार का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर से बेचा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से विदेश निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत आज परिवर्तन और नए आत्मविश्वास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ये सामूहिक संकल्प और प्रयासों के परिणाम को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की पुस्तक संकल्प से सिद्धि का मोदी युग का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find over 1,300 missing people, including 288 Indians. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that missing Indian nationals include 73 Indians who were working on the Trishuli One Power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. The External Affairs Ministry has informed that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra have been rescued in Nepal.
3: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
2: Mr. Jaiswal said that India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. On the international stranded in Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian Embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. He said there are approximately 200 Indian nationals who have sought assistance for evacuation.

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: திரைக்கானம் நிறைவு பெற்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே முகேஷ் குமார். नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह, इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की।

0: सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199682919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386907 9779701075000 और 9779801032611 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: Discussions are expected.
6: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसपे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
1: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जपारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप

0: में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप है।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि

0: खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
1: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1

0: Country White. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खास तौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है?
2: बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं, लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी, और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं
1: जी,
2: उनमें जो भारत की सम्मान है, अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था। तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, जहाँ जहाँ बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहाँ आएं और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं, और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज

0: के समय में?
1: देखिए आज तो बहुत ही अधिक है, इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि अहिंसा होनी चाहिए, और उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल इसको जो अहिंसा का है उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए।
2: रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अब वो संख्या 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर आ चुका है, जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों।
1: हमारा इतिहास आप देखिए कि वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी भी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है, या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है
2: जी,
1: न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट है अगर उनका उत्खनन सही करे, और उनके बारे में अगर इतिहास में सही जानकारी मिल जाए तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।
2: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थायी सूची से शुरू हुई थी और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है। तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
1: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं, जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है
2: जी।
1: तब वो उसको मान्यता देते हैं, और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहां एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए, और जब वहां पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वहां की म्युनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
2: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
1: देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान हैं, और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया। उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख हैं, दुखों के बारे में उन्होंने 4 उन्होंने उपदेश दिए थे, और वो अगर कोई उन 4 उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, 8 सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप 8 सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही हैं, हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है, और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं, और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी

0: ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
1: रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोध गया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
0: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और सारनाथ में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है, तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जा रहा, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखें, और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
1: अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है, तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
0: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना, तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी ही नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हम आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
1: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है, या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
0: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा, इतना धन कहाँ से आएगा, तो इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
1: व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं आपकी, यहां पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
0: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत, जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं,
1: कहीं
0: उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया, तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है, उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन, जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बट जाएगा।
1: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूं तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है, तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें वापस लाया जा रहा है, तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है, तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो

0: से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ के मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से हुआ। एक तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए, और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से, जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया। क्योंकि बहुत सारे देशों ने ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 1000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है। तो उस महत्व का अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं, तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
1: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं, ये विभिन्न देशों में ले जा करके वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, मुझे लगता है कि आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध की देशों का प्रचार करना है, तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे इसमें ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे, और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है।
1: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड

0: You need electricity generation, reliable grid, battery technology, financing, roads, regulations, skilled workers, recycling systems. Actually, the system, if you look at it in holistically, it is the system which I'm talking. The same applies to green hydrogen, renewable energy, storage, cities, agriculture, and waste. System asks, what infrastructure policies, institutions, incentives must change so that sustainable choices become practical and economically attractive? That is what is to be done.
1: So my last question to you would be that from the last two to three summits, where has industry moved from strategizing documents to actual investment and execution? And where do you feel that the gaps remain between the documents and the implementation if we talk about?
0: I would say that in Indian industry has made a very important transition over the last 2 or 3 years. We have moved beyond sustainability being primarily boardroom strategy, ESG report, or net zero commitment. There is now real capital going into renewable power, transmission storage, flexibility, mobility, green hydrogen, cleaner manufacturing, and resource efficiency. But the transition is not uniform. There lies the problem.
1: Thanks, Mr. Mahajan, for this insightful discussion on the 21st Global Sustainability Summit, sharing your views on the theme of this year's program, how does sustainable development matters for Indian economy in the longer run, and what policies needs to be taken to make India a sustainable developed country, especially when we have the vision of Viksit Bharat by 2047.
0: Thank you very much for inviting me to.
2: You were listening to a discussion on 21st Global Sustainability Summit, Accelerating India's Sustainability Transition. The participants were Rahul Mahajan, Senior Journalist, and Shreya Pathak, Anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
5: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887 और +9111230887 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1,300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया और नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल का साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयोफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: States till Saturday. IMD also predicted heavy rainfall over Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will be on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic starting this Saturday. Addressing a press conference in New Delhi, External Affairs Ministry Secretary West C.B. George said, on the first leg of his visit, the Prime Minister will undertake a two-day state visit to Tashkent in Uzbekistan at the invitation of the President of Uzbekistan. Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector as defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. On the eve of Raksha Bandhan, President Draupadi Murmu has extended greetings to people. The President said that the festival of Raksha Bandhan has been an integral part of country's culture and tradition since ancient times. And in men's cricket, second and final test between India and host Sri Lanka ended in a draw in Colombo. Sri Lanka reached 429 for 9 in the second innings, taking a lead of 216 runs on the fifth and final day before both the captains agreed on a draw. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishu Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1,300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हुई। नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के अगले तीन दिनों में टूटने का खतरा बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता समीक्षा में बासमती चावल के लिए भारत जापान के बाजार में अधिक पहुंच की मांग करेगा और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1,300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। इस बीच नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के अगले तीन दिनों में टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार आज सुबह तक इस झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा था और झील पहले ही उफान पर है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों में इसमें 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है, जिससे झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के सरकारी अखबार के अनुसार अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। संभावित खतरे से निपटने के लिए बाढ़ की स्थिति का आकलन और जोखिम मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि झील टूटने की स्थिति में बचाव अभियान चलाया जा सके। चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत के गिरोंग टाउनशिप का दौरा किया। कल आई बाढ़ में 558 लोगों के लापता होने की खबर है। बाढ़ ने चीन नेपाल सीमा के पास गांवों और कस्बों को अपनी चपेट में ले लिया था। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और नेपाल सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ वहां फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
3: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल 16

0: लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 285 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 54 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सुरक्षित निकाले गए लोगों में त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए श्रीराम शर्मा।
2: विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111238871 और +9111238871 पर संपर्क कर सकते हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851386007 और +9779801026117 नंबर जारी किए हैं। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उधर संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए $20 लाख की शुरुआती सहायता दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और जन जन के बीच संबंधों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे। ताशकंद से श्री मोदी किर्गिस्तान जाएंगे। यहां वे राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, संपर्क और अवसर से जुड़ी भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन से अलग SCO देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री 6ठे विश्व नोमाड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की समीक्षा के दौरान जापान में बासमती चावल के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग करेगा। साथ ही खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी। जापान के ओसाका में निवेशक और कारोबारी रोड शो में श्री गोयल ने जापान को बासमती चावल के बढ़ते निर्यात को लेकर उद्योग जगत की चिंताओं पर कहा कि जापान में चावल एक संवेदनशील क्षेत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
4: कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही यह श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली है। फॉलो ऑन खेलते हुए मेजबान श्रीलंका ने दूसरी पारी में अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने

0: Please stand by for the news at 11 in Hindi and English.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779801261 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की दो दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज डिफेंस प्रोडक्शन नियरली क्वाड्रुपल्स टू अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीस इन 10 इयर्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना होकर 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़ककर 24,091 पर आ गया। नेसो स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी, जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे। हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे। सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बेकवाली का दबाव बना रहा, जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे। बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up the early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HDFC बैंक 2.1%, NBFC में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गए। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, ICICI बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, a mid-small private bank shed 2.6%, PSU banks

0: एसपी आज 1.5% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.2% नीचे आकर बंद हुआ। इस बीच बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी अगस्त महीने की बैठक में बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 3% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान पहले के 2.6% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.7% पर ही बनाए रखा। दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, जो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने हैं ऐसी स्थिति में? हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट्स में पिछले 2 वर्षों में। इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल इंडेक्स है, पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक एक, एक, एक दिशा बता रहा है कि इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी कहां जा रही है। साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकॉनमीज थी यहां पर AI driven जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, वो ज्यादातर लिस्टेड है वहां पर, और वहां पर काफी ज्यादा वहां पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा। साउथ कोरिया को देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज जो उन्होंने ब्याज दर बढ़ाए हैं, हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन स्टेबल रखा है
0: जी।
1: और अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है, पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेकर प्रेशर बना रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, और सेंट्रल बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हालांकि नोबडी सेज दैट, अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है अगले वर्ष तो प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा।
0: तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है?
1: नहीं नहीं, ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशन के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
2: In more news, Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector. The defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically, but was also developing the capability to maintain, overhaul and upgrade them. Your comment on defense security vis-a-vis the economy, because you're looking at manufacturing and employment.
1: So interestingly, India, of course, until a few years back, was importing most of its defense requirements. So there were strategic issues with that, the dependence on other countries, reliability of, and the technical advancement that you could make. Also, when you were importing all this defense equipment, then it only meant that we did not develop domestic manufacturing sector. So what has happened in the last 10 years, I think it's really remarkable. The way India has emerged as a manufacturer of defense equipment domestically for our own armed forces as well as an export sector. And I know many companies personally, small manufacturing companies which have really come up and done very well in defense sector. So it is good for India's security, strategic security, and it is also good for India's manufacturing sector because that ecosystem is now developing very well, very fast. And I think it's a remarkable, if you really look back on, I look back on the 10-15 years of India's growth in last decade, then I think defense sector manufacturing would be the one of the biggest stories, success stories of Indian economy.
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये भारत के वित्तीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ खाते खोले गए, इनसे लगभग 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी समावेशी पहल है जो सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रति खाता 5,356 रुपए जमा हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 78% खाते अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, जिनमें से लगभग 56% भागीदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लाखों लोगों का सशक्तिकरण किया है। श्री चौधरी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव किया है। पुनीत, जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था, एक ऐसी सोच रखी गई थी कि हर एक भारतीय के पास उसका बैंक खाता हो, चाहे वो किसी भी तबके का आता हो।

0: आज जब हम ये देखते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
1: देखिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रैक्टिकली हर भारतीय के पास आज एक बैंक अकाउंट है। उसका कई आपको सीधा बेनिफिट दिखते हैं, दो बेनिफिट आपको बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की यूपीआई की आज ट्रांजेक्शन होती है, जो बिकॉज ऑफ जनधन योजना की वजह से, क्योंकि गांव गांव में घर घर में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है कि जो हम गांव गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है, वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई, ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है, और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
0: ओके,
2: लेट्स नाउ मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा?
1: देखिए, जो ईरान और यूएस की जो वॉर है वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है, वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब्स गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई वो नहीं है, अब एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है, और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है, तो मुझे लगता है वो नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब।
2: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, in the Gulf area where, the shipping takes place, and, oil prices are escalating as a result of what Iran is doing and what the U.S. is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's moderated. Is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
1: So it is basically a sign of better supply of oil in the world, because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up, and therefore the Urals prices have come down. Primarily, I would say this is a stabilization of the oil market. Oil market, I think, is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are of course settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
0: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
1: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को, जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही है, लेकिन गैस की जो सप्लाईज है वो अफेक्टेड है, तो वो दोनों देश अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है अब पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट।
0: आगे बढ़ते हैं। सर्राफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 1,58,386 रुपए प्रति दस्कान पर था, और चांदी 1.9% लुढ़क कर 2,39,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत जी, एक निवेशक के नजरिए से अगर इन दोनों चीजों को देखें तो आपको क्या लगता है, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
1: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफी जंप आया है, और यदि यूएस डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेजी बन रही है, और जो फैक्टर्स हैं अभी यूएस डॉलर वीकनेस के, वो थोड़े फैक्टर है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे। तो यूएस इंटरेस्ट रेट्स पे नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा।
2: ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इनटू गोल्ड वंस अगेन, व्हाई इज दिस ट्रेंड पिकिंग अप नाउ? बिकॉज सिल्वर वेंट अप एंड देयर वाज लॉट ऑफ बाइंग बाय इंडियन फार्मर्स बिकॉज ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट इनकम बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक्स डूइंग?

0: So central banks, as like I said, if the dollar index suffers, then immediately we say buying in precious metals. So that is what is happening, the hedging against a dollar depreciation.
1: पुनीत, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद निखिल.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defence Minister Rajnath Singh says defence production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years when global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
1: Namaskar.
2: Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851-31687 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा में समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डोमियन फर्नांडो शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887 और +9111230887 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए $20 लाख की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की निर्यात बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2रा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमकुई अशांग इलाके के IT रोड पर कल सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेनापति जिले में लोगों ने बंद का ऐलान किया। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शाम को राजधानी इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हमले की समीक्षा की गई और सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मणिपुर में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन AMSU ने इम्फाल में 61वां हंगर मार्चर्स डे या चकलाम खोंगपत मनाया। ये दिन उन 4 छात्र नेताओं की याद मनाया जाता है जिनकी मौत 27 अगस्त 1965 को मणिपुर में चावल की कथित कृत्रिम कमी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हो गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। त्योहारियों के मौसम से पहले 25,000 से ज्यादा चांदी के ज्वेलर्स BIS के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing.

0: அதுதான் மானம்.
1: பதில் நல்வாழ்த்து நான் சொல்ல

கதை தினம் தினம் நடக்குதடி.

0: ஒலித்த நல்ல நேரம் படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் டி எம் சவுந்தரராஜன், பி சுசீலா. கேட்ட நிகழ்ச்சி நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி
1: நமஸ்கார். ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है.
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और

0: इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। BIS ने बताया कि 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करता है। मानक ब्यूरो ने चांदी आभूषण ग्राहकों को सलाह दी है कि वे BIS हॉलमार्क देखें और BIS केयर ऐप के जरिए HUID को जांचें। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2रा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli One project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project.

0: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में

0: 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। श्रीलंका ने कहा है कि वह नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरू कुमार दिसानायके ने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच 2रा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. The death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli One project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines on the international stranded on the Chinese side. Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718.

0: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
3: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयाँ, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के नागरिक शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया।

0: इस बीच श्रीलंका ने कहा है कि वो नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ये यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। उधर कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 389 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,500 people missing, out of these many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. The Ministry of External Affairs has also set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718, +91 11 2308 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 9968 291988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. The National Disaster Response Force, NDRF, has said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored.